0: लायन
1: अम्मा अम्मा छोड़ छोड़ छोड़
0: लाख खेली फिरी बच्चा देखिन कुकुर बिराल जस्तै झगडा
2: परेछ
0: सौदा लगेर भित्रिन अन्त तँ चाहिँ के भएको
1: ओइ इसाको त मसँग
3: अम्बो
2: के
1: अन्त भोलि ड्राइभ पिकनिक आउँदैनस्
2: आउँदिन
1: जम्न
2: आउँदिन आफै जा
1: साच्चै के आउँदैनस्